Prinais tu pa talute zang gaspa sonse darung ata dasa aga se during 29 halale agas 29 supai kangri ulus tenok kale ngata juche jua mina puru kangri chak tene dor yumso kil jung do tarki dil chung chak zeng ek dang ngai azu gyane tene kangri u kitana i kangri u te phantok dukle ka wa chu kangri chinmola tene i wa kangri chunbe tene phantok ka speed line na कांग्रेस वैज्ञानिक भातों तो गले कि यूँ लंग दून ला चंगा उन्हें दून ला चोस का निजास दे गोस्पा पीते ट्राई में का जुस्ते होंगे क्या करे तेरे आ कांग्रेस जिनमो हो तेरे यार स्किल ला जुस्ते होंगे क्या ले तेरे आ कांग्रेस वाट्रोट को गुवाई हो के तेरे नंग दून ला बांजी जुस्सर बाजी तं